0: बिहान 9 बजेदेखि 1 बजेसम्म।
1: चौधरी आयुर्वेद औषधालय जिल्ला प्रशासन सिडिओ कार्यालयको सामुन्ने नेपालगंज बाँके।
2: डाक्टर अनिल कुमार चौधरी कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विज्ञ नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त एवं परामर्श चिकित्सक। सम्पर्क नम्बर 98480 27590 र 081534328। फेरि सुन्नुहोस् है 98480 27590।
3: यो हो तपाईँको आफ्नै रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज।

ये है आपका रेडियो, रेडियो टाइगर वर्दिया की आवाज़, वॉइस ऑफ वर्दिया, वॉइस ऑफ वर्दिया।

0: ये है आपका रेडियो रेडियो टाइगर वर्दिया की आवाज, वॉइस ऑफ वर्दिया, वॉइस ऑफ वर्दिया।
1: तुम्हारा शादी के बाद भी ऐसी है, बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं है।
2: अरे बाप, आज तो शाहरुख खान निकल रहा है।
1: सच्ची? ये, ये, ये, ये, ये, ये, ये, ये,